0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने तीन टाउन हाउस। एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकती ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479